0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपने संदेश में पोप लियो चौदहवें ने ईश्वर के राज्य पर चिंतन किया, जो बल से नहीं बल्कि विनम्रता, धैर्य एवं प्रेम के माध्यम से चुपचाप बढ़ता है। पोप ने ख्रिस्तियों को ईश्वर के छिपे कार्यों पर भरोसा रखने और दुनिया में सुसमाचार के छोटे बीज बनने का प्रोत्साहन दिया। पोप लियो चौदहवें ने रविवार 19 जुलाई को कस्तेल गंदोल्फो में देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। फिर रविवार के सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए उन्होंने कहा,
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
0: बीज बोने वाले के दृष्टांत के बाद यीशु भीड़ को संबोधित करना जारी रखते हैं। इसके लिए कई प्रतीकों का सहारा लेते हैं, अच्छा गेहूं एवं जंगली पौधे, सरसों के बीज एवं आटे में खमीर। ये तीनों छोटे दृष्टांत इतिहास में ईश्वर के राज्य के आने, मानव जीवन में उनके काम करने के तरीके और जिस तरह से वह बढ़ता फैलता एवं दुनिया को अंदर से बदलता है, उसकी याद दिलाती हैं।
1: Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio.
0: इन छवियों के द्वारा यीशु हमें उस सोच में पड़ने के प्रलोभन से बचने की चेतावनी देते हैं कि ईश्वर एक ताकतवर इंसान है, जो खुद को जबरदस्ती थोपते, जो कब्जा करते और हावी होते हैं, या जो विजयी रूप में आते हैं।
1: Al contrario, Dio predilige la piccolezza.
0: इसके विपरीत ईश्वर छोटापन पसंद करते, जो उनके समझदार प्यार की निशानी है, जिसके द्वारा वे हमें स्वतंत्र छोड़ते कि हम उन्हें स्वीकार करें अथवा ना करें। उनका प्यार जंगली पौधों के बीच भी अपनी उपस्थिति महसूस कराता है, सबसे छोटे बीज की तरह छिपे और अनदेखे तरीके से काम करता है और बिना आवाज के आटे को खमीरा बना देता। पोप के अनुसार कुछ लोगों की उम्मीद है कि ईश्वर अचानक दखल देंगे और दुनिया से बुराई को तुरंत खत्म कर देंगे, लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि ऐसी उम्मीदें ख्रिस्ती जीवन और कलीसिया के बारे में एक गलत सोच भी बना सकती है। पोप ने कहा,
1: Fratelli sorelle, con queste parabole, Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia.
0: भाइयों एवं बहनों, इन दृष्टांतों के द्वारा यीशु इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन और इतिहास में कैसे काम करते हैं। हम कभी कभी उम्मीद करते हैं कि ईश्वर कुछ शानदार करेंगे। हम चाहते हैं कि वे ऊपर से आकर बुराई के जंगली घास को तुरंत जड़ से उखाड़ दें। हम एक मजबूत एवं ताकतवर ईश्वर की कल्पना करते हैं और दुर्भाग्य से हम ख्रिस्ते होने और कलीसिया होने का अपना तरीका भी इसी छवि पर बनाते हैं। लेकिन संत पापा ने कहा कि ईश्वर का राज जंगली घास के बीच भी फैलता है, जिसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सही करने की जरूरत है, ताकि हम बुराई के अंधेरे के बावजूद उगने वाली अच्छाई को पहचान सकें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बच सकें, या सबसे छोटे बीज की तरह आता। और इसलिए इस प्रक्रिया के साथ हमें धैर्य रखने की जरूरत है, ताकि हम इसे दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजों और सामान्य जीवन की सादगी में पहचान सकें। यह आटे में खमीर की तरह दिखाई नहीं देता और इसलिए हम निराश ना हों और तब भी विश्वास रखें जब ऐसा लगता हो कि ईश्वर नहीं है। असल में वे हमेशा हमारे साथ हैं और उनका प्यार हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है, एक व्यक्ति के रूप में और एक कलीसिया के रूप में। अपने आसपास की सच्चाइयों के बीच हमें सुसमाचार पर ध्यान देने वाला नजरिया अपनाने के लिए बुलाया गया है। अभिमानी फैसलों से दूसरों का जल्दबाजी में विरोध किए बिना, ताकत और बल से खुद को थोपे बिना और ईश्वर के काम पर भरोसा खोए बिना, जैसा कि उस समय के कार्डिनल रत्सिंगर ने कहा था, या खुद को बीज के तर्क के आगे झुकाने की बात है, जो सफलता और महानता का नहीं बल्कि खुद को छोटा बनाकर दूसरों की सेवा करने का है। इस तरह हम सुसमाचार के छोटे बीजों की तरह बन जाएंगे, जो अंकुरित होते और प्यार के खमीर की तरह दुनिया के आटे को बदल देते हैं। Pop ne kaha,
1: preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza.
0: Aye hum dhanya kumari Maryam se prarthna karein, jo apne chote pan mein vachan ke beech ka swagat karna janti hain, ki ve hamari yatra mein hame sahara dein aur hamari madhyastha karein. Itna kahne ke baad Sant Papa ne bhakt samuday ke saath devdut prarthna ka paath kiya tatha sabhi ko apna preritik aashirwad diya.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत उन्होंने कस्तेल गंदोल्फो में उपस्थित सभी विश्वासियों का अभिवादन किया. Unhone kaha,
1: cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo,
0: pyare bhaiyo aur behno, jab main yahan kuch din aaram kar raha hu, main aap sabhi Castel Gandolfo ke niwasiyon ka abhivadan karta hu aur duniya bhar se aane wale teerthyatriyon ka sahash swagat karta hu. Uske baad unhone duniya bhar ke vibhinn hisson mein jari yuddh ke karan peedit logon ki yaad ki aur kaha,
1: continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi.
0: Hum yuddh aur hinsa se jooj rahe alag alag deshon par chinta se nazar rakh rahe hain. Aaye hum un logon ko na bhule jo ladai ke karan kasht jhel rahe hain aur maut ke shikar ho rahe hain, aur hum shanti ke liye apni lagatar prarthnaon ko jari rakhein. Sant Papa ne Mother Elvira ke Chenakulo samuday ka abhivadan kiya jo Salujo mein jeevan ke utsav ke liye ekatrit hain. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के लिए एकत्रित हुए फोकलारे नवीन परिवार मूवमेंट, समर स्कूल में हिस्सा लेने वाले मैक्सिकन स्टूडेंट्स और कैथलिक वर्ल्ड फेलोशिप ग्रुप का अभिवादन किया. उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोर्स के प्रतिभागियों को संबोधित कर उन्होंने कहा, मैं इंटरनेशनल फॉर्मेशन कोर्स में हिस्सा लेने वाले रेन्यूम क्रिस्टी के सदस्यों का अभिवादन करता हूं. मैं उन लोगों का भी अभिवादन करता हूं जो द लायन पिलग्रिमेज में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके साथ सिडनी ऑस्ट्रेलिया के सहायक धर्माध्यक्ष एंटनी पार्सी भी हैं. तत्पश्चात संत पापा ने रोम की येसु के स्वर्गरोहण की चैरिटी की धर्म बहनों का अभिवादन किया और उनके साथ विभिन्न परिवारों, युवाओं एवं पल्ली दलों का भी अभिवादन किया, और अंत में उन्होंने सभी को एक शांतिपूर्ण रविवार की शुभकामनाएं दी.
1: A tutti voi auguro una serena domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विल्लानोवा विश्वविद्यालय और उनके स्थिरता कार्यालय ने संत पापा लियो 14वें स्थिरता मेडल शुरू किया है। यह एक नया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो उन लोगों को दिया जाएगा जिनके नेतृत्व ने स्थिरता, पारिस्थितिक जिम्मेदारी और अभिन्न मानव विकास को आगे बढ़ाया है। अमेरिका के अगुस्टिनियन विश्वविद्यालय विल्लानोवा ने प्रेस रिलीज में बताया कि यह मेडल उन लोगों को सम्मानित करने के लिए है जिनका काम स्थिरता का एक होलिस्टिक विजन दिखाता है, जिसमें पर्यावरण की देखभाल, सामाजिक न्याय, कमजोर आबादी की चिंता और आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी से देखभाल शामिल है। पहला संत पापा लियो 14वां स्थिरता मेडल संत पापा द्वारा कास्टेल गंडोल्फो में विल्लानोवा अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा, जो 12 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। सम्मेलन में लगभग 300 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें शिक्षाविद, शोधकर्ता, कलीसिया के प्रतिनिधि, संस्थानों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नेता शामिल हैं। एक अंतर विषयक फोरम में, जिसे बातचीत से ठोस सहयोगात्मक कार्यवाही की ओर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। उधर मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बंगुई बाल चिकित्सा को 19 बेड दान दिए जाएंगे। ये बेड सेफालू धर्म प्रांत के विकर जनरल फादर जुसेपे लिसियार्डी के एक दान उगाही से खरीदे गए हैं। यह उनके पुरोहित बनने की 25वीं सालगिरह के मौके पर किया गया था। उनका पुरोहिताभिषेक 14 जुलाई 2001 को हुआ था। उन्होंने इस खास सालगिरह को उदारता के काम से मनाने का फैसला लिया। उन्होंने अपने विश्वासियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को पारंपरिक तोहफा देने के बदले बच्चों के लिए बनी अफ्रीकी अस्पताल में दान देने को कहा। इस अच्छी प्रतिक्रिया का नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में 11,350 यूरो जमा हो गए, जिससे 19 बेड खरीदे जा सके। बच्चों के इस चिकित्सालय में बच्चों का कुपोषण विभाग भी है, जहां संत पापा फ्रांसिस 2015 में दया की असाधारण जुबली के लिए बंगुई में पवित्र दरवाजा खोला था। यह चिकित्सालय संत पापा फ्रांसिस के साथ बहुत करीब से जुड़ा है, जिन्होंने इसके नवीनीकरण और विस्तार में सहयोग दिया था। उधर ईरान में एक और रात आपसी गोलाबारी की गुजरी, जहां अमेरिका से पूरे देश में धमाकों की आवाज सुनी गई, जिनका मकसद होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमला करने की ईरानी सेना की काबिलियत को कमजोर करना था। सबसे बड़ा हमला बुशहर में हुआ, जो ईरान का एकमात्र सिविलियन न्यूक्लियर संरचनाओं वाला बंदरगाह शहर है। जवाब में तेहरान ने 2 तेल टैंकर को उड़ा दिया। यह एक ऐसा कदम था जो नौसेना नाकाबंदी से लेकर पूरे अगले भाग में हमले तक बढ़ा। IRGC ने इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है और कहा कि जब तक अमेरिका हमला करता रहेगा, तेल और गैस का रास्ता सुरक्षित नहीं रहेगा। कुवैत और बहरीन में हवाई हमले का अलर्ट जारी है, जबकि जॉर्डन में 2 रात पहले हुए हमले में लापता 3रे अमेरिकी सैनिक की लाश मिली है। ईरान के विदेश मंत्री आरागच्ची ने एक साक्षात्कार में कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ युद्ध तभी खत्म करेगा जब वह ताकतवर होगा, चाहे वह मिलिट्री जीत से हो या राजनयिक बढ़त से। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस के खिलाफ अभी लगे आर्थिक प्रतिबंधों को ईरान तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। लेबनान के राष्ट्रपति आउन अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सचिव मार्को रूबियो के साथ शुरुआती बातचीत की। आज राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने की उम्मीद है। इस बीच

अल डब्बा जाते समय रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जिससे यात्रियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उत्तरी सूडान के रेगिस्तान में फंसने के बाद 33 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। वे 2 महीने से ज्यादा समय से वहां फंसे हुए थे। मरने वालों में एक शिक्षिका और उसके 5 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ देश के उत्तर में पहुंचने की कोशिश कर रही थी, ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू कर सके, जो 4 साल से ज्यादा समय से चल रहे गृह युद्ध की वजह से रुकी हुई थी। परिवार वालों के मुताबिक ज्यादातर यात्री औरतें थीं और साथ ही छोटे बच्चे थे, जो रेगिस्तान में प्यास से मर गए। इस तरह जबकि लड़ाई सीमा से दूर भी दुखद घटनाओं का कारण बन रही है। सूडानी संकट काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अरब और अफ्रीकी मामलों के सलाहकार मसाद बुल्लोस के बीच बातचीत का केंद्र था। विदेश मंत्री अब्देलती ने एक स्थायी युद्ध विराम हासिल करने, मानवीय मदद को मजबूत करने और सूडानी लोगों के नेतृत्व में एक सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत दोहराई। अपनी ओर से वाशिंगटन ने सूडानी मुद्दे पर मिस्र के साथ साथ लीबिया, लेबनान और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मुद्दों पर करीबी तालमेल बनाए रखने के अपने इरादे की पुष्टि की। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष बालिस्तेरो मानवाधिकार परिषद से आम लोगों की सुरक्षा के लिए एक अविलंब अपील कर रहे हैं। सेव द चिल्ड्रन संगठन ने बताया कि एल ओबेद में हिंसा बढ़ने की वजह से पिछले 2 हफ्तों में 5,500 से ज्यादा बच्चों को उनके घरों से निकाल दिया गया है। शहर और आसपास के इलाकों में बेघर हुए लोगों की संख्या अब 11,000 से ज्यादा हो गई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपने संदेश में पोप लियो 14वें ने ईश्वर के राज्य पर चिंतन किया, जो बल से नहीं बल्कि विनम्रता, धैर्य एवं प्रेम के माध्यम से चुपचाप बढ़ता है। पोप ने ख्रिस्तियों को ईश्वर के छिपे कार्यों पर भरोसा रखने और दुनिया में सुसमाचार के छोटे बीज बनने का प्रोत्साहन दिया। पोप लियो 14वें ने रविवार 19 जुलाई को कस्तेल गंदोल्फो में देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। फिर रविवार के सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए उन्होंने कहा,
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
0: बीज बोने वाले के दृष्टांत के बाद यीशु भीड़ को संबोधित करना जारी रखते हैं। इसके लिए कई प्रतीकों का सहारा लेते हैं। अच्छा गेहूं एवं जंगली पौधे, सरसों के बीज एवं आटे में खमीर, ये तीनों छोटे दृष्टांत इतिहास में ईश्वर के राज्य के आने, मानव जीवन में उनके काम करने के तरीके और जिस तरह से वह बढ़ता फैलता एवं दुनिया को अंदर से बदलता है, उसकी याद दिलाती हैं।
1: Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio.
0: इन छवियों के द्वारा यीशु हमें उस सोच में पड़ने के प्रलोभन से बचने की चेतावनी देते हैं कि ईश्वर एक ताकतवर इंसान है, जो खुद को जबरदस्ती थोपते, जो कब्जा करते और हावी होते हैं, या जो विजय रूप में आते हैं।
1: Al contrario, Dio predilige la piccolezza.
0: इसके विपरीत ईश्वर छोटापन पसंद करते, जो उनके समझदार प्यार की निशानी है, जिसके द्वारा वे हमें स्वतंत्र छोड़ते कि हम उन्हें स्वीकार करें अथवा ना करें। उनका प्यार जंगली पौधों के बीच भी अपनी उपस्थिति महसूस कराता है, सबसे छोटे बीज की तरह छिपे और अनदेखे तरीके से काम करता है और बिना आवाज के आटे को खमीरा बना देता। पोप के अनुसार कुछ लोगों की उम्मीद है कि ईश्वर अचानक दखल देंगे और दुनिया से बुराई को तुरंत खत्म कर देंगे, लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि ऐसी उम्मीदें ख्रिस्ती जीवन और कलीसिया के बारे में एक गलत सोच भी बना सकती है। पोप ने कहा,
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole, Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia.
0: भाइयों एवं बहनों, इन दृष्टांतों के द्वारा यीशु इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन और इतिहास में कैसे काम करते हैं। हम कभी कभी उम्मीद करते हैं कि ईश्वर कुछ शानदार करेंगे। हम चाहते हैं कि वे ऊपर से आकर बुराई के जंगली घास को तुरंत जड़ से उखाड़ दें। हम एक मजबूत एवं ताकतवर ईश्वर की कल्पना करते हैं और दुर्भाग्य से हम ख्रिस्ते होने और कलीसिया होने का अपना तरीका भी इसी छवि पर बनाते हैं। लेकिन संत पापा ने कहा कि ईश्वर का राज जंगली घास के बीच भी फैलता है, जिसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सही करने की जरूरत है, ताकि हम बुराई के अंधेरे के बावजूद उगने वाली अच्छाई को पहचान सकें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बच सकें, या सबसे छोटे बीज की तरह आता। और इसलिए इस प्रक्रिया के साथ हमें धैर्य रखने की जरूरत है, ताकि हम इसे दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजों और सामान्य जीवन की सादगी में पहचान सकें। यह आटे में खमीर की तरह दिखाई नहीं देता और इसलिए हम निराश ना हों और तब भी विश्वास रखें जब ऐसा लगता हो कि ईश्वर नहीं है। असल में वे हमेशा हमारे साथ हैं और उनका प्यार हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है, एक व्यक्ति के रूप में और एक कलीसिया के रूप में। अपने आसपास की सच्चाइयों के बीच हमें सुसमाचार पर ध्यान देने वाला नजरिया अपनाने के लिए बुलाया गया है। अभिमानी फैसलों से, दूसरों का जल्दबाजी में विरोध किए बिना, ताकत और बल से खुद को थोपे बिना और ईश्वर के काम पर भरोसा खोए बिना, जैसा कि उस समय के कार्डिनल रत्सिंगर ने कहा था, या खुद को बीज के तर्क के आगे झुकाने की बात है, जो सफलता और महानता का नहीं बल्कि खुद को छोटा बनाकर दूसरों की सेवा करने का है। इस तरह हम सुसमाचार के छोटे बीजों की तरह बन जाएंगे, जो अंकुरित होते और प्यार के खमीर की तरह दुनिया के आटे को बदल देते हैं। Pope ne kaha,
1: preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza.
0: Aye hum dhanya kwari Maryam se prarthna kare, jo apne chote pan mein vachan ke beej ka swagat karna janti hain, ki ve hamari yatra mein hame sahara de aur hamari madhyastha kare. Itna kahne ke baad Sant Papa ne bhakt samuday ke saath devdut prarthna ka paath kiya tatha sabhi ko apna preritik aashirwad diya.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria,
1: benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Devdut prarthna ke uprant, unhone Castel Gandolfo mein upasthit sabhi vishwasiyon ka abhivadan kiya. Unhone kaha,
1: cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo,
0: pyare bhaiyo aur behno, jab main yahan kuch din aaram kar raha hoon, main aap sabhi Castel Gandolfo ke niwasiyon ka abhivadan karta hoon aur duniya bhar se aane wale teerthyatriyon ka sahars swagat karta hoon. Uske baad unhone duniya bhar ke vibhinn hisson mein jari yuddh ke karan peedit logon ki yaad ki aur kaha,
1: continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi.
0: Hum yuddh aur hinsa se jooj rahe alag alag deshon par chinta se nazar rakh rahe hain. Aaye hum un logon ko na bhoolein jo ladai ke karan kasht jhel rahe hain aur maut ke shikar ho rahe hain, aur hum shanti ke liye apni lagatar prarthnaon ko jari rakhein. Sant Papa ne Mother Elvira ke Chenakulo samuday ka abhivadan kiya jo Salujo mein jeevan ke utsav ke liye ekatrit hain. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के लिए एकत्रित हुए फोकलारे नवीन परिवार मूवमेंट समर स्कूल में हिस्सा लेने वाले मैक्सिकन स्टूडेंट्स और कैथलिक वर्ल्ड फेलोशिप ग्रुप का अभिवादन किया. उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोर्स के प्रतिभागियों को संबोधित कर उन्होंने कहा, मैं इंटरनेशनल फॉर्मेशन कोर्स में हिस्सा लेने वाले रेन्यूम क्रिस्ती के सदस्यों का अभिवादन करता हूं. मैं उन लोगों का भी अभिवादन करता हूं जो द लायन पिलग्रिमेज में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके साथ सिडनी ऑस्ट्रेलिया के सहायक धर्माध्यक्ष एंटनी पार्सी भी हैं. तत्पश्चात संत पापा ने रोम की येसु के स्वर्गरोहण की चैरिटी की धर्म बहनों का अभिवादन किया और उनके साथ विभिन्न परिवारों, युवाओं एवं पल्ली दलों का भी अभिवादन किया, और अंत में उन्होंने सभी को एक शांतिपूर्ण रविवार की शुभकामनाएं दी.
1: A tutti voi auguro una serena domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विल्लानोवा विश्वविद्यालय और उनके स्थिरता कार्यालय ने संत पापा लियो 14वें स्थिरता मेडल शुरू किया है। यह एक नया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो उन लोगों को दिया जाएगा जिनके नेतृत्व ने स्थिरता, पारिस्थितिक जिम्मेदारी और अभिन्न मानव विकास को आगे बढ़ाया है। अमेरिका के अगुस्टिनियन विश्वविद्यालय विल्लानोवा ने प्रेस रिलीज में बताया कि यह मेडल उन लोगों को सम्मानित करने के लिए है जिनका काम स्थिरता का एक होलिस्टिक विजन दिखाता है, जिसमें पर्यावरण की देखभाल, सामाजिक न्याय, कमजोर आबादी की चिंता और आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी से देखभाल शामिल है। पहला संत पापा लियो 14वां स्थिरता मेडल संत पापा द्वारा कास्टेल गंडोल्फो में विल्लानोवा अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा, जो 12 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। सम्मेलन में लगभग 300 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें शिक्षाविद, शोधकर्ता, कलीसिया के प्रतिनिधि, संस्थानों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नेता शामिल हैं। एक अंतर विषयक फोरम में, जिसे बातचीत से ठोस सहयोगात्मक कार्यवाही की ओर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। उधर मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बंगुई बाल चिकित्सा को 19 बेड दान दिए जाएंगे। ये बेड सेफालू धर्म प्रांत के विकर जनरल फादर जुसेपे लिसियार्डी के एक दान उगाही से खरीदे गए हैं। यह उनके पुरोहित बनने की 25वीं सालगिरह के मौके पर किया गया था। उनका पुरोहिताभिषेक 14 जुलाई 2001 को हुआ था। उन्होंने इस खास सालगिरह को उदारता के काम से मनाने का फैसला लिया। उन्होंने अपने विश्वासियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को पारंपरिक तोहफा देने के बदले बच्चों के लिए बनी अफ्रीकी अस्पताल में दान देने को कहा। इस अच्छी प्रतिक्रिया का नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में 11,350 यूरो जमा हो गए, जिससे 19 बेड खरीदे जा सके। बच्चों के इस चिकित्सालय में बच्चों का कुपोषण विभाग भी है, जहां संत पापा फ्रांसिस 2015 में दया की असाधारण जुबली के लिए बंगुई में पवित्र दरवाजा खोला था। यह चिकित्सालय संत पापा फ्रांसिस के साथ बहुत करीब से जुड़ा है, जिन्होंने इसके नवीनीकरण और विस्तार में सहयोग दिया था। उधर ईरान में एक और रात आपसी गोलाबारी की गुजरी, जहां अमेरिका से पूरे देश में धमाकों की आवाज सुनी गई, जिनका मकसद होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमला करने की ईरानी सेना की काबिलियत को कमजोर करना था। सबसे बड़ा हमला बुशहर में हुआ, जो ईरान का एकमात्र सिविलियन न्यूक्लियर संरचनाओं वाला बंदरगाह शहर है। जवाब में तेहरान ने 2 तेल टैंकर को उड़ा दिया। यह एक ऐसा कदम था जो नौसेना नाकाबंदी से लेकर पूरे अगले भाग में हमले तक बढ़ा। IRGC ने इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है और कहा कि जब तक अमेरिका हमला करता रहेगा, तेल और गैस का रास्ता सुरक्षित नहीं रहेगा। कुवैत और बहरीन में हवाई हमले का अलर्ट जारी है, जबकि जॉर्डन में 2 रात पहले हुए हमले में लापता 3रे अमेरिकी सैनिक की लाश मिली है। ईरान के विदेश मंत्री आरागच्ची ने एक साक्षात्कार में कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ युद्ध तभी खत्म करेगा जब वह ताकतवर होगा, चाहे वह मिलिट्री जीत से हो या राजनयिक बढ़त से। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस के खिलाफ अभी लगे आर्थिक प्रतिबंधों को ईरान तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। लेबनान के राष्ट्रपति आउन अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सचिव मार्को रूबियो के साथ शुरुआती बातचीत की। आज राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने की उम्मीद है। इस बीच खबर है कि दोनों लोग दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना को पूरी तरह हटाने और 26 जून को हस्ताक्षर किए गए संरचना समझौते को लागू करने की जरूरत पर आम सहमति पर पहुंचे। हालांकि सप्ताहांत में इजरायली हमले जारी रहे, खासकर नबातीय इलाके में।
उधर कुछ दिन पहले मेलिट और उत्तर दारफुर राज्य के बीच रुकी एक गाड़ी के पास लाशें मिली। वे मई के बीच में दक्षिण दारफुर से निकली एक बस में सफर कर रहे थे, लेकिन अल डब्बा जाते समय रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जिससे यात्रियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उत्तरी सूडान के रेगिस्तान में फंसने के बाद 33 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। वे 2 महीने से ज्यादा समय से वहां फंसे हुए थे। मरने वालों में एक शिक्षिका और उसके 5 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ देश के उत्तर में पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू कर सके, जो 4 साल से ज्यादा समय से चल रहे गृह युद्ध की वजह से रुकी हुई थी। परिवार वालों के मुताबिक ज्यादातर यात्री औरतें थीं और साथ ही छोटे बच्चे थे, जो रेगिस्तान में प्यास से मर गए। इस तरह जबकि लड़ाई सीमा से दूर भी दुखद घटनाओं का कारण बन रही है। सूडानी संकट काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अरब और अफ्रीकी मामलों के सलाहकार मसाद बुल्लोस के बीच बातचीत का केंद्र था। विदेश मंत्री अब्देलती ने एक स्थायी युद्ध विराम हासिल करने, मानवीय मदद को मजबूत करने और सूडानी लोगों के नेतृत्व में एक सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत दोहराई। अपनी ओर से वाशिंगटन ने सूडानी मुद्दे पर मिस्र के साथ साथ लीबिया, लेबनान और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मुद्दों पर करीबी तालमेल बनाए रखने के अपने इरादे की पुष्टि की। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष बालिस्तेरो मानवाधिकार परिषद से आम लोगों की सुरक्षा के लिए एक अविलंब अपील कर रहे हैं। सेव द चिल्ड्रन संगठन ने बताया कि एल ओबेद में हिंसा बढ़ने की वजह से पिछले 2 हफ्तों में 5,500 से ज्यादा बच्चों को उनके घरों से निकाल दिया गया है। शहर और आसपास के इलाकों में बेघर हुए लोगों की संख्या अब 11,000 से ज्यादा हो गई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे, तीस

0: से चिरदोर्म अवृतों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
3: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब, हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
1: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: समय आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु येसु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
1: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु येसु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मपुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमनितास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो 14वें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना 25 मई 2026 को की गई। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण में धर्मग्रंथ की दो निशानियों, बाबेल के मीनार और यरूशलेम के दीवार के निर्माण की चर्चा की। इन दोनों निशानियों के प्रकाश में पवित्र आत्मा हमें तकनीकी और डिजिटल क्रांति के संग हमारे संबंध को देखने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक खोजों को हम दक्षताओं के रूप में पाते हैं जो मानवता को दिए गए हैं, जिससे वे हमारे लिए फलदायक हो सकें। तकनीकी में हम चंगाई, जुड़े रहने, शिक्षित करने और हमारे सामान्य निवास की सुरक्षा को पाते हैं, लेकिन यह हमें विभाजित, विखंडित और एक तरह से नए अन्याय का शिकार भी बना सकती है। अमूर्त रूप में तकनीकी स्वयं अपने में मानवीय समस्याओं का एक समाधान नहीं है, जैसे कि यह अपने में स्वाभाविक रूप से बुराई नहीं है। प्रायोगिक रूप में यद्यपि तकनीकी अपने में कभी उदासीन नहीं है, क्योंकि यह उन लोगों के अनुरूप कार्य करती है जो उसका उपयोग और उसका संचालन करते हैं। अतः पहला चुनाव तकनीकी के लिए हाँ या नहीं के बीच नहीं है, बल्कि बाबेल बनाने या यरूशलेम का निर्माण फिर से करने के बीच है, एक ऐसी ताकत के बीच जो स्वर्ग पर राज करने का दावा करती है, और ऐसे लोगों के बीच ईश्वर की उपस्थिति, जिससे भ्रातृत्व में एक साथ मिलकर रहने के लिए दीवारों को फिर से बनाने हेतु मिलकर काम किया जा सके। श्रोताओं, इस भांति हमें चाहिए कि हम बाबेल निशानियों को दूर करें, मुख्यतः लाभ कमाने की चाह, जिसके कारण कमजोरों की आहुति होती है, एक एक रूपता जो उदासीनता उत्पन्न करती है, और ढोंग जो एक भाषा है, यहाँ तक कि एक डिजिटल भी, जो सभी चीजों को परिभाषित कर सकती है, जिसमें हम मानव के रहस्य, आंकड़ों और कार्य क्षमताओं को भी पाते हैं। अमानवीयकरण की जोखिम एक भविष्य का निर्माण जो ईश्वर को अलग कर देता और दूसरों को सिर्फ एक साधन स्वरूप देखता है, एक प्राचीन और सदैव नया प्रलोभन है, आज एक तकनीकी के भेष में आती है। इसके बदले आइए हम नेहमिया के मार्ग का चुनाव, नबी नेहमिया के मार्ग का चुनाव करें, जो हमारे लिए एक साथ मिलकर कार्य करने की महत्वपूर्णता को व्यक्त करता है, जहां हम निर्वासन से पुनः लौटते हुए ईश्वर के एक शहर का निर्माण करते हैं। आज पुनर्निर्माण करने का अर्थ है यह पहचानना कि अलग अलग आवाजों और नजरियों से, जो कभी कभी हमें बोली जाने वाली भाषाओं में भ्रमित होने की याद दिलाती है, एक अच्छी संभावना को हमारे लिए लेकर आती है। वास्तव में यह एक साथ निर्माण करने की संभावना उत्पन्न करती है, जहां हम विभिन्नताओं को एक संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हुए उसे सुनने और वार्ता का माध्यम बना सकते हैं, जिसके द्वारा न्याय और भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस साझा कार्य में ख्रिस्तीय अपने ईश्वर की ओर अग्रसर करने वाले अद्वितीय कार्य की खोज करते हैं, जिससे उनकी ज्योति में बहुसंख्यक विभाजन का कारण नहीं बनता, बल्कि सिनोडालिटी के अभ्यास द्वारा एक स्थल बनता है, जहां मानवता अपने ठोस आधार शिलाओं और अंतिम लक्ष्य की पुनः खोज कर सकती है। प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तिका में संत योहन नए यरूशलेम को देखते हैं, जो स्वर्ग से ईश्वर की ओर से उतरता है। यह सारी मानवता के लिए ईश्वर का उपहार है, और कृपा का यह दृश्य हम ख्रिस्तियों के लिए एक निमंत्रण है, एक साथ मिलकर कार्य करने का, जिससे हम आज के शहरों में शांति, न्याय और समुदाय में सम्मानजनक जीवन की स्थापना कर सकें। श्रोताओं, जन सामान्य के हित में स्थापित एक शहर का अर्थ हमारे लिए सर्वप्रथम ईश्वर के संग संबंध स्थापित करने की बात को समाहित करता है। इसका अर्थ इस बात को पहचानना है कि उनके प्रेम की सच्चाई हमें जीवन के लिए निमंत्रण देती है, हम सारी चीजों में पूर्णता को प्राप्त करें और उनके संग एकता में बने रहें, जैसे कि संत अगुस्टिन कहा करते थे और हम भी कह सकते हैं, तूने हमें अपने लिए बनाया है हे प्रभु, और हमारे हृदय तब तक व्याकुल हैं जब तक वे तुझ में आराम ना करें। वास्तव में ईश्वर ने हमारे हृदयों में खुशी की चाह को गढ़कर रखा है, जो हमारे जीवन के सारे आयामों का आलिंगन करता है। कलीसिया हमारे समय के नर और नारियों से वार्ता करते हुए इस चाह को पहचानती और इसकी गहरी आवश्यकता को आवश्यक रूप में निर्देशित और सुरक्षित रखती है। दूसरी बात, संत पापा कहते हैं, जन सामान्य की भलाई हेतु कार्य करने का अर्थ हमारे लिए यह है कि हम मानवता की कमजोरियों और खामियों को स्वीकार करें, उन्हें बिना किसी गलती के रूप में देखें जिसे सुधार की जरूरत हो। आज मानवता में पूर्ण जीवन की चाह अपने में एक जोखिम की स्थिति में जान पड़ती है, जो गलत लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती, जैसे कि तकनीकी की संभावना, जो हमें सारी कमियों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा करती है, और हितकारी शैलियां, जो सारी जनता को पीछे छोड़ देती है। अक्सर हम अपनी आशा को असीमित अपग्रेड में बनाए रखते हैं, विकास के स्वरूप में जो असमानताओं को बढ़ाती है, और ऐसे तुरंत समाधान में जो लोगों के जख्मों को भरने में नाकामयाब होते हैं। इसका परिणाम यह होता है, कुछ लोग अपने को स्वयं को स्थापित करने की असीमित धुन में खोए रहते, तो वहीं बहुतों को जरूरी आवश्यकताओं से भी वंचित रहना पड़ता है। कलीसिया हमें याद दिलाती है एक दृढ़ता में, वहीं नम्र वचनों में, कि सच्ची परिपूर्णता कमजोरियों को खत्म करने में प्राप्त नहीं की जाती है, बल्कि यह शांतिमय विकास में होता है। यह उस परिस्थिति में पाई जाती है जहां स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व एक दूसरे के ताने बाने बनते हैं, जिसे हम आपसी सेवा और सच्ची एकता में प्राप्त करते हैं, और जहां विकास का मापदंड हर व्यक्ति के सम्मान और हर किसी की भलाई में निहित है। तीसरा, एक दुनिया का निर्माण जिसमें हर किसी का विकास होता है, अपने में साझा उत्तरदायित्व और साहस की मांग करती है। कोई भी अकेला अपने में दुनिया के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बोझ को वहन नहीं कर सकता है। उसी भांति कोई भी इतना कमजोर नहीं है कि वह अपनी जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकता हो, क्योंकि शक्ति की श्रेष्ठता को हम कमजोरी में पाते हैं। हर किसी को अपने हिस्से की दीवार मिली है, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं, उद्यमियों और कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और विधायकों, नागर अधिकारियों, विख्यात आंदोलन और विश्वासी समुदाय को। यह हमारे लिए पूरकता का तर्क है, जो पीढ़ियों, लोगों, अनुशासन और संस्कृति के बीच सहभागिता के मूल्य को महत्व देता है, जिसके माध्यम समाज में खुशहाली, शांति और स्थायित्व को बढ़ावा मिलता है। हम तनाव या विभिन्नताओं से ना घबराएं, क्योंकि वे हमारे लिए सृजनात्मक शक्तियां बनती हैं। जब हम साझा उत्तरदायित्व से अपने को निर्देशित होने देते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदवे के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने सोमवार को इटली के मोंते कैसिनो मठ का दौरा किया और मठवासी समुदाय से मुलाकात की एवं संत बेनेडिक्ट की कब्र पर शांति के लिए प्रार्थना की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार संत पापा ने संत बेनेडिक्ट की कब्र पर मौन प्रार्थना करते हुए शांति के लिए प्रार्थना की, खासकर दुनिया के उन जगहों के लिए जहां हिंसा एवं युद्ध हो रहे हैं। उन्होंने वहां धम्मसंघी समुदाय के साथ दोपहर का भोजन किया और बाद में कस्तेल गंदोल्फो लौटे, जहाँ वे 27 जुलाई तक अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिता रहे हैं। मोंते कैसिनो का मठ रोम से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है और यह बेनेडिक्टाइन ऑर्डर का पहला मठ है जिसका निर्माण खुद संत बेनेडिक्ट ने 529 ईस्वी में किया था। 15 फरवरी 1944 को मोंते कैसिनो मठ लड़ाई के दौरान लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था, जब मित्र देशों की सेनाओं ने गलती से मान लिया था कि इस पर जर्मन सैनिकों का कब्जा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतालवी सरकार से मिले फंड से इसे फिर बनाया गया। इसे 1964 में पोप पॉल षष्ठम ने फिर से प्रतिष्ठापित किया। आज मठ में एक छोटा बेनेडिक्टान समुदाय है जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों एवं आगंतुकों का स्वागत करता है। पास ही में कैसिनो युद्ध कब्रस्थान है जहां 4000 से ज्यादा सैनिकों की कब्रें हैं। मठ के पास ही पोलिश कब्रस्थान भी है जहां 1072 पोलिश सैनिकों की कब्रें हैं। 10 दिन पहले इसी जगह पर, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मलबे में बदल गई थी और युद्ध की तबाही की हमेशा रहने वाली निशानी है, 2026 का पाचिस नॉन्सियस पुरस्कार यरूशलेम के लैटिन प्राधिकरणाध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पिज्जाबाला को दिया गया था। वैटिकन प्रकाशन केंद्र ने पोप लियो 14वें की एक नई किताब प्रकाशित की जिसका शीर्षक है निरस्त्रीकृत एवं निरस्त्रीकरण, शांति एक उपहार। अलेसांद्रो बैनफी द्वारा संपादित यह खंड 8 मई 2025 को पोप लियो 14वें के चुनाव के बाद से उनके भाषणों एवं शांति पर उनके चिंतन को एक साथ लाता है। यह संकलन जो इटालियन में है लेकिन जल्द ही अंग्रेजी में भी उपलब्ध होगा, पोप के पहले से अप्रकाशित लेख से शुरू होता है। तुम्हें शांति मिले या पुनर्जीवित येसु का अपने शिष्यों को पहला अभिवादन था, शांति का पहला उपहार जिसको पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों और पूरी दुनिया को दिया है। लेकिन यह उपहार सस्ता नहीं है। नाजरेत के गुरु के महिमान्वित शरीर पर दुख के घाव दिखे। उन्होंने नफरत, हिंसा और दुनिया की सूली पर चढ़ाए जाने का अनुभव किया। निहत्था और बिना हथियार के येसु अन्याय सहे और जी उठे। सुसमाचार की घोषणा इतिहास में खुद को शामिल करती है और शामिल करती रहेगी आज भी 2000 साल पहले के समान। शांति का यह महान अभिलाषा जो कई दिलों को झकझोरती है लेकिन इसे अक्सर धमकी भी दी जाती है, कुचला जाता है और उफास का पात्र बनाया जाता है। आज लगभग 103 राष्ट्र किसी न किसी तरह पृथ्वी पर युद्ध में शामिल हैं। यूक्रेन में, मध्य पूर्व में, सूडान में, म्यांमार में, यमन, कोंगो और कई अन्य जगहों पर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और लोग मर रहे हैं। पोप लिखते हैं, अपने समय में मेरे प्रिय पूर्वाधिकारी संत पापा फ्रांसिस ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से व्यापक संघर्ष की स्थिति का वर्णन करने के लिए तीसरा विश्व युद्ध टुकड़ों में कहावत गढ़ी है। इस विषय पर अपने संबोधन को देखते हुए जो अब इस संकलन में संकलित है, मैं कुछ पहलुओं को रेखांकित करना चाहूँगा जो मेरे दिल के करीब है। आगे पोप लिखते हैं, सबसे बढ़कर शांति एक जिम्मेदारी है। यदि किसी समस्या का सामना करने, तनाव का अनुभव करने या अपमानित होने पर हमारी पहली प्रवृत्ति दूसरों का न्याय करने, आरोप लगाने और उनकी निंदा करने की होती है, तो निश्चय ही पहले उदासीनता और फिर हमारे चारों ओर घृणा बढ़ेगी। वास्तविकता को देखने का एक तरीका है जो नष्ट करता है और निर्माण नहीं करता। इसके बजाय हमें देखना चाहिए कि शांति मुझसे शुरू होती है या हमसे शुरू होती है। संत अगस्तीन कहते हैं, समय परेशान है, समय कठिन है, समय दयनीय है। अच्छा जीवन जिए और अच्छा जीवन जीकर आप समय को बदल देंगे।
आप समय को बदल सकते हैं और फिर आपके पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं होगा। हम दुनिया के शक्तिशाली लोगों से शांति की मांग नहीं कर सकते यदि हम इसे स्वयं जीना शुरू नहीं करते हैं। अपने दैनिक जीवन के रिश्तों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे शहरों और कार्यस्थलों में शांति रोज के छोटे छोटे कामों से बनती है, जैसे मुस्कान, चोट माफ करने और अच्छा शब्द कहने से। एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के संघ ने 20 जुलाई को जकार्ता में अपनी 12वीं महासभा का उद्घाटन किया और इस महासभा को कलीसिया के सिनोडल एवं मिशनरी नवीनीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम के प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए धर्मदक्ष मार्सेलिनो एंटोनियो मारालिट जूनियर ने एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के संघ की शुरुआत और इसके मिशन को याद किया। उन्होंने बताया कि संघ दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्व एवं मध्य एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों और कलीसिया के अधिकार क्षेत्रों का एक स्वयंसेवक संघ है। इससे 1970 में संत पापा पॉल षष्ठम ने मनीला दौरे के दौरान एशिया धर्मदक्षों की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद निर्मित किया था, जबकि इसके नियमों को 1972 में वैटिकन ने मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि 5 दशकों से ज़्यादा समय से FABC ने धर्मदक्षों को दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में से एक में कलीसिया के मिशन पर एक साथ विचार करने के लिए एक मंच दिया है। इसने स्थानीय कलीसियाओं के बीच एकता एवं सहयोग को बढ़ावा दिया है, साथ ही सुसमाचार का प्रचार, दूसरे धर्मों के साथ बातचीत, धार्मिक सोच, सामाजिक जुड़ाव, मानव विकास और सामाजिक बातचीत को बढ़ावा दिया है और इस इलाके में आमतौर पर आने वाली प्रेरिता से जुड़ी चुनौतियों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में काम किया है। यह महासभा आमतौर पर 4 साल में बुलाई जाती है और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो 14वें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना 25 मई 2026 को की गई। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण में धर्मग्रंथ की दो निशानियों, बाबेल के मीनार और यरूशलेम के दीवार के निर्माण की चर्चा की। इन दोनों निशानियों के प्रकाश में पवित्र आत्मा हमें तकनीकी और डिजिटल क्रांति के संग हमारे संबंध को देखने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक खोजों को हम दक्षताओं के रूप में पाते हैं जो मानवता को दिए गए हैं, जिससे वे हमारे लिए फलदायक हो सकें। तकनीकी में हम चंगाई, जुड़े रहने, शिक्षित करने और हमारे सामान्य निवास की सुरक्षा को पाते हैं, लेकिन यह हमें विभाजित, विखंडित और एक तरह से नए अन्याय का शिकार भी बना सकती है। अमूर्त रूप में तकनीकी स्वयं अपने में मानवीय समस्याओं का एक समाधान नहीं है, जैसे कि यह अपने में स्वाभाविक रूप से बुराई नहीं है। प्रायोगिक रूप में यद्यपि तकनीकी अपने में कभी उदासीन नहीं है, क्योंकि यह उन लोगों के अनुरूप कार्य करती है जो उसका उपयोग और उसका संचालन करते हैं। अतः पहला चुनाव तकनीकी के लिए हाँ या नहीं के बीच नहीं है, बल्कि बाबेल बनाने या यरूशलेम का निर्माण फिर से करने के बीच है, एक ऐसी ताकत के बीच जो स्वर्ग पर राज करने का दावा करती है और ऐसे लोगों के बीच ईश्वर की उपस्थिति, जिससे भ्रातृत्व में एक साथ मिलकर रहने के लिए दीवारों को फिर से बनाने हेतु मिलकर काम किया जा सके। श्रोताओं, इस भांति हमें चाहिए कि हम बाबेल निशानियों को दूर करें, मुख्यतः लाभ कमाने की चाह, जिसके कारण कमजोरों की आहुति होती है, एक रूपता जो उदासीनता उत्पन्न करती है और ढोंग जो एक भाषा है, यहाँ तक कि एक डिजिटल भी, जो सभी चीजों को परिभाषित कर सकती है, जिसमें हम मानव के रहस्य, आंकड़ों और कार्य क्षमताओं को भी पाते हैं। अमानवीयकरण की जोखिम एक भविष्य का निर्माण जो ईश्वर को अलग कर देता और दूसरों को सिर्फ एक साधन स्वरूप देखता है, एक प्राचीन और सदैव नया प्रलोभन है, आज एक तकनीकी के भेष में आती है। इसके बदले आइए हम नेहमिया के मार्ग का चुनाव, नबी नेहमिया के मार्ग का चुनाव करें, जो हमारे लिए एक साथ मिलकर कार्य करने की महत्वपूर्णता को व्यक्त करता है, जहां हम निर्वासन से पुनः लौटते हुए ईश्वर के एक शहर का निर्माण करते हैं। आज पुनर्निर्माण करने का अर्थ है यह पहचानना कि अलग अलग आवाजों और नजरियों से, जो कभी कभी हमें बोली जाने वाली भाषाओं में भ्रमित होने की याद दिलाती है, एक अच्छी संभावना को हमारे लिए लेकर आती है। वास्तव में यह एक साथ निर्माण करने की संभावना उत्पन्न करती है, जहां हम विभिन्नताओं को एक संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हुए उसे सुनने और वार्ता का माध्यम बना सकते हैं, जिसके द्वारा न्याय और भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस साझा कार्य में ख्रिस्तीय अपने ईश्वर की ओर अग्रसर करने वाले अद्वितीय कार्य की खोज करते हैं, जिससे उनकी ज्योति में बहुसंख्यक विभाजन का कारण नहीं बनता, बल्कि सिनोडालिटी के अभ्यास द्वारा एक स्थल बनता है, जहां मानवता अपने ठोस आधारशिलाओं और अंतिम लक्ष्य की पुनः खोज कर सकती है। प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तिका में संत योहन नए यरूशलेम को देखते हैं, जो स्वर्ग से ईश्वर की ओर से उतरता है। यह सारी मानवता के लिए ईश्वर का उपहार है, और कृपा का यह दृश्य हम ख्रिस्तियों के लिए एक निमंत्रण है, एक साथ मिलकर कार्य करने का, जिससे हम आज के शहरों में शांति, न्याय और समुदाय में सम्मानजनक जीवन की स्थापना कर सकें। श्रोताओं, जन सामान्य के हित में स्थापित एक शहर का अर्थ हमारे लिए सर्वप्रथम ईश्वर के संग संबंध स्थापित करने की बात को समाहित करता है। इसका अर्थ इस बात को पहचानना है कि उनके प्रेम की सच्चाई हमें जीवन के लिए निमंत्रण देती है, हम सारी चीजों में पूर्णता को प्राप्त करें और उनके संग एकता में बने रहें, जैसे कि संत अगुस्टिन कहा करते थे और हम भी कह सकते हैं, तूने हमें अपने लिए बनाया है हे प्रभु, और हमारे हृदय तब तक व्याकुल हैं जब तक वे तुझ में आराम ना करें। वास्तव में ईश्वर ने हमारे हृदयों में खुशी की चाह को गढ़कर रखा है, जो हमारे जीवन के सारे आयामों का आलिंगन करता है। कलीसिया हमारे समय के नर और नारियों से वार्ता करते हुए इस चाह को पहचानती और इसकी गहरी आवश्यकता को आवश्यक रूप में निर्देशित और सुरक्षित रखती है। दूसरी बात, संत पापा कहते हैं, जन सामान्य की भलाई हेतु कार्य करने का अर्थ हमारे लिए यह है कि हम मानवता की कमजोरियों और खामियों को स्वीकार करें, उन्हें बिना किसी गलती के रूप में देखें जिसे सुधार की जरूरत हो। आज मानवता में पूर्ण जीवन की चाह अपने में एक जोखिम की स्थिति में जान पड़ती है, जो गलत लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती, जैसे कि तकनीकी की संभावना, जो हमें सारी कमियों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा करती है, और हितकारी शैलियां, जो सारी जनता को पीछे छोड़ देती है। अक्सर हम अपनी आशा को असीमित अपग्रेड में बनाए रखते हैं, विकास के स्वरूप में जो असमानताओं को बढ़ाती है, और ऐसे तुरंत समाधान में जो लोगों के जख्मों को भरने में नाकामयाब होते हैं। इसका परिणाम यह होता है, कुछ लोग अपने को स्वयं को स्थापित करने की असीमित धुन में खोए रहते, तो वहीं बहुतों को जरूरी आवश्यकताओं से भी वंचित रहना पड़ता है। कलीसिया हमें याद दिलाती है एक दृढ़ता में, वहीं नम्र वचनों में, कि सच्ची परिपूर्णता कमजोरियों को खत्म करने में प्राप्त नहीं की जाती है, बल्कि यह शांतिमय विकास में होता है। यह उस परिस्थिति में पाई जाती है जहां स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व एक दूसरे के ताने बाने बनते हैं, जिसे हम आपसी सेवा और सच्ची एकता में प्राप्त करते हैं, और जहां विकास का मापदंड हर व्यक्ति के सम्मान और हर किसी की भलाई में निहित है। तीसरा, एक दुनिया का निर्माण जिसमें हर किसी का विकास होता है, अपने में साझा उत्तरदायित्व और साहस की मांग करती है। कोई भी अकेला अपने में दुनिया के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बोझ को वहन नहीं कर सकता है। उसी भांति कोई भी इतना कमजोर नहीं है कि वह अपनी जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकता हो, क्योंकि शक्ति की श्रेष्ठता को हम कमजोरी में पाते हैं। हर किसी को अपने हिस्से की दीवार मिली है, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं, उद्यमियों और कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और विधायकों, नागर अधिकारियों, विख्यात आंदोलन और विश्वासी समुदाय को। यह हमारे लिए पूरकता का तर्क है, जो पीढ़ियों, लोगों, अनुशासन और संस्कृति के बीच सहभागिता के मूल्य को महत्व देता है, जिसके माध्यम समाज में खुशहाली, शांति और स्थायित्व को बढ़ावा मिलता है। हम तनाव या विभिन्नताओं से ना घबराएं, क्योंकि वे हमारे लिए सृजनात्मक शक्तियां बनती हैं। जब हम साझा उत्तरदायित्व से अपने को निर्देशित होने देते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने सोमवार को इटली के मोंते कैसिनो मठ का दौरा किया और मठवासी समुदाय से मुलाकात की एवं संत बेनेडिक्ट की कब्र पर शांति के लिए प्रार्थना की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार संत पापा ने संत बेनेडिक्ट की कब्र पर मौन प्रार्थना करते हुए शांति के लिए प्रार्थना की, खासकर दुनिया के उन जगहों के लिए जहां हिंसा एवं युद्ध हो रहे हैं। उन्होंने वहां धम्मसंघी समुदाय के साथ दोपहर का भोजन किया और बाद में कस्तेल गंदोल्फो लौटे, जहाँ वे 27 जुलाई तक अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिता रहे हैं। मोंते कैसिनो का मठ रोम से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है और यह बेनेडिक्टाइन ऑर्डर का पहला मठ है, जिसका निर्माण खुद संत बेनेडिक्ट ने 529 ईस्वी में किया था। 15 फरवरी 1944 को मोंते कैसिनो मठ लड़ाई के दौरान लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था, जब मित्र देशों की सेनाओं ने गलती से मान लिया था कि इस पर जर्मन सैनिकों का कब्जा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतालवी सरकार से मिले फंड से इसे फिर बनाया गया। इसे 1964 में पोप पॉल षष्ठम ने फिर से प्रतिष्ठापित किया। आज मठ में एक छोटा बेनेडिक्टान समुदाय है जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों एवं आगंतुकों का स्वागत करता है। पास ही में कैसिनो युद्ध कब्रस्थान है, जहां 4000 से ज्यादा सैनिकों की कब्रें हैं। मठ के पास ही पोलिश कब्रस्थान भी है, जहां 1072 पोलिश सैनिकों की कब्रें हैं। 10 दिन पहले इसी जगह पर, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मलबे में बदल गई थी और युद्ध की तबाही की हमेशा रहने वाली निशानी है, 2026 का पाचिस नॉन्सियस पुरस्कार यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पित्साबाला को दिया गया था। वैटिकन प्रकाशन केंद्र ने पोप लियो 14वें की एक नई किताब प्रकाशित की, जिसका शीर्षक है निरस्त्रीकृत एवं निरस्त्रीकरण, शांति एक उपहार। अलेसांद्रो बैनफी द्वारा संपादित यह खंड 8 मई 2025 को पोप लियो 14वें के चुनाव के बाद से उनके भाषणों एवं शांति पर उनके चिंतन को एक साथ लाता है। यह संकलन जो इटालियन में है, लेकिन जल्द ही अंग्रेजी में भी उपलब्ध होगा, पोप के पहले से अप्रकाशित लेख से शुरू होता है। तुम्हें शांति मिले या पुनर्जीवित येसु का अपने शिष्यों को पहला अभिवादन था। शांति का पहला उपहार जिसको पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों और पूरी दुनिया को दिया है, लेकिन यह उपहार सस्ता नहीं है। नाजरेत के गुरु के महिमान्वित शरीर पर दुख के घाव दिखे। उन्होंने नफरत, हिंसा और दुनिया की सूली पर चढ़ाए जाने का अनुभव किया। निहत्था और बिना हथियार के येसु अन्याय सहे और जी उठे। सुसमाचार की घोषणा इतिहास में खुद को शामिल करती है और शामिल करती रहेगी, आज भी 2000 साल पहले के समान। शांति का यह महान अभिलाषा जो कई दिलों को झकझोरती है, लेकिन इसे अक्सर धमकी भी दी जाती है, कुचला जाता है और उफास का पात्र बनाया जाता है। आज लगभग 103 राष्ट्र किसी न किसी तरह पृथ्वी पर युद्ध में शामिल हैं। यूक्रेन में, मध्य पूर्व में, सूडान में, म्यांमार में, यमन, कोंगो और कई अन्य जगहों पर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और लोग मर रहे हैं। पोप लिखते हैं, अपने समय में मेरे प्रिय पूर्वाधिकारी संत पापा फ्रांसिस ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से व्यापक संघर्ष की स्थिति का वर्णन करने के लिए तीसरा विश्व युद्ध टुकड़ों में कहावत गढ़ी है। इस विषय पर अपने संबोधन

धन को देखते हुए जो अब इस संकलन में संकलित है, मैं कुछ पहलुओं को रेखांकित करना चाहूँगा जो मेरे दिल के करीब हैं। आगे पोप लिखते हैं, सबसे बढ़कर शांति एक जिम्मेदारी है। यदि किसी समस्या का सामना करने, तनाव का अनुभव करने या अपमानित होने पर हमारी पहली प्रवृत्ति दूसरों का न्याय करने, आरोप लगाने और उनकी निंदा करने की होती है, तो निश्चय ही पहले उदासीनता और फिर हमारे चारों ओर घृणा बढ़ेगी। वास्तविकता को देखने का एक तरीका है जो नष्ट करता है और निर्माण नहीं करता। इसके बजाय हमें देखना चाहिए कि शांति मुझसे शुरू होती है या हमसे शुरू होती है। संत अगस्तीन कहते हैं, समय परेशान है, समय कठिन है, समय दयनीय है। अच्छा जीवन जिए और अच्छा जीवन जीकर आप समय को बदल देंगे। आप समय को बदल सकते हैं और फिर आपके पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं होगा। हम दुनिया के शक्तिशाली लोगों से शांति की मांग नहीं कर सकते यदि हम इसे स्वयं जीना शुरू नहीं करते हैं। अपने दैनिक जीवन के रिश्तों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे शहरों और कार्यस्थलों में शांति रोज के छोटे छोटे कामों से बनती है, जैसे मुस्कान, चोट माफ करने और अच्छा शब्द कहने से। एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के संघ ने 20 जुलाई को जकार्ता में अपनी 12वीं महासभा का उद्घाटन किया और इस महासभा को कलीसिया के सिनोडल एवं मिशनरी नवीनीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम के प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए धर्मदक्ष मार्सेलिनो एंटोनियो मारालिट जूनियर ने एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के संघ की शुरुआत और इसके मिशन को याद किया। उन्होंने बताया कि संघ दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्व एवं मध्य एशिया के कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों और कलीसिया के अधिकार क्षेत्रों का एक स्वयंसेवक संघ है। इससे 1970 में संत पापा पॉल षष्ठम ने मनीला दौरे के दौरान एशिया धर्मदक्षों की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद निर्मित किया था, जबकि इसके नियमों को 1972 में वैटिकन ने मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि 5 दशकों से ज़्यादा समय से FABC ने धर्मदक्षों को दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में से एक में कलीसिया के मिशन पर एक साथ विचार करने के लिए एक मंच दिया है। इसने स्थानीय कलीसियाओं के बीच एकता एवं सहयोग को बढ़ावा दिया है, साथ ही सुसमाचार का प्रचार, दूसरे धर्मों के साथ बातचीत, धार्मिक सोच, सामाजिक जुड़ाव, मानव विकास और सामाजिक बातचीत को बढ़ावा दिया है और इस इलाके में आमतौर पर आने वाली प्रेरिता से जुड़ी चुनौतियों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में काम किया है। यह महासभा आमतौर पर 4 साल में बुलाई जाती है और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।